0: दिल्ली केंद्रावरील बातम्या आम्ही सहक्षेपित करू.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं. तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया. महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया. नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई. माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया. भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है. काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं. ये नंबर है 9779851316807 और 9779701705000. चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है. पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजी टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है. नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं. वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे. इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है. गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की. श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है. नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता.
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है. सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना.
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है.
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है. चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ. जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा.
1: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है. कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे. राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा. सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है. वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर 2 में से 1 ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलप्रासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00861852842905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
5: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
6: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
7: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा।

0: इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
3: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट,

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 8:40 और आज है 27 अगस्त 2026. दिन है गुरुवार का यानी थर्सडे का. कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान. सो मुंबई गुड मॉर्निंग. और आज का दिन कितना खास है. संगीत के जो दीवाने हैं, संगीत के जो प्रेमी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के दिन क्या है. और आप अक्सर इस स्लॉट में मेरे साथ रहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या होने वाला है. तो व्हाट्सएप के जरिए अगर आपको कुछ भी आइडिया है, कुछ भी अंदाज़ा है तो आप हमें बता सकते हैं कि आज कार्यक्रम जो मस्त मुंबई में होता है, आज यानी थर्सडे मॉर्निंग को आज के सितारे, तो आज हमारे इस स्लॉट में कौन से सितारे होने वाले हैं, यानी किस हस्ती के बारे में हम बात करेंगे और किसके गाने आपको सुनवाएंगे. सो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें सुबह सुबह. और पहला गीत आपकी नज़र करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत गीत.

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी 8:54 और 30 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर। और हमारे लिसनर्स बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और पूरी जानकारी रखते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और इतने सारे लोगों ने सही जवाब दिया कि मेरे लिए अब आपके नाम लेना मुश्किल हो गया है। इसलिए अगले स्लॉट में मैं चेक करूंगा कि किसने सबसे पहले सही जवाब दिया, उन चंद लोगों के नाम मैं ज़रूर लूंगा, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है दोस्तों, पूरा व्हाट्सएप भर गया है। आज ऑल टाइम ग्रेट सिंगर मुकेश जी की डेथ एनिवर्सरी है, यानी उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन उनका निधन हो गया था, इस दुनिया से वो चले गए थे। तो दोस्तों, इस स्लॉट में आज हम उन्हें याद करेंगे, उनके गाने सुनेंगे और उनकी बातें करेंगे। और उनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। एक वो समय था और एक आज का समय, यानी लगभग कह सकते हैं कि जो 40-50 साल का जो समय है, मुकेश की आवाज़ आज भी सुनना उतना ही अच्छा लगता है जितना तब लगता था। यानी कितनी पीढ़ियां बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू आज भी बरकरार है और हमेशा हमेशा रहेगा। सुनते रहिए FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये गीत, आपका दिल लूट लेगा।

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जी हाँ दोस्तों, 9:11 और 11 सेकंड हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आज किस हस्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने सही जवाब दिया, जैसा कि मैंने पहले कहा। लेकिन मैं जिन लोगों ने सबसे पहले जवाब दिया उनके नाम ले रहा हूँ। दोस्तों, ठीक 8:42 पर अमरावती से पंकज माहौड़ जी ने एकदम सही जवाब दिया, और ठीक 8:42 पर ही तनुजा शर्मा जी ने अंधेरी से सही जवाब भेजा, यानी आज मुकेश जी की पुण्यतिथि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके बाद ठीक 8:44 पर पुणे से राकेश माथुर जी का जवाब भी बिल्कुल सही है। और तीसरा टाइम जो मैंने चुना है, 8:46 पर मनीष वकील ने कांदीवली से सही जवाब भेजा है। और इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है और इतने सारे नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप सभी के इस प्यार के लिए, सहयोग के लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनते रहिए FM रेनबो। तो गीत संगीत के दीवानों, आज हम मुकेश के बारे में बात करेंगे और उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। उनका पूरा नाम था मुकेश चंद्र माथुर। 22 जुलाई 1923 को उनका जन्म हुआ था और उन्होंने सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पढ़ना लिखना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें संगीत से इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी कि उनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। आज अगर कोई बच्चा कहे कि मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, तो दोस्तों उसके मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। और बात भी सही है, पढ़ाई लिखाई करना कितना ज़रूरी है हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी। उन्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे लगते थे, बहुत भाते थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से इतना प्यार करते थे, उन्हें देख कर समझ कर खुद ही उन्हें बजाने की कोशिश किया करते थे, और इस तरह से धीरे धीरे सीख भी लेते थे। मोतीलाल जी के बारे में सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने बड़े फिल्म स्टार थे और वो मुकेश जी के करीबी रिश्तेदार थे। उन्होंने मुकेश के टैलेंट को बचपन में ही पहचान लिया, उन्हें मुंबई लेकर आए, संगीत की शिक्षा दिलवाई, यानी कुछ क्लासेस करवाई, और 1941 में मुकेश को एक एक्टर के तौर पर, एक सिंगर के तौर पर पहला ब्रेक मिला। और गाना था दिल ही बुझा हुआ तो है, और इस तरह उन्हें फिल्मी दुनिया में प्रवेश मिला। लेकिन एक स्टार बनने में उन्हें बहुत समय लगा। वाकई जिंदगी इम्तिहान लेती है, मुंबई हर आने वाले को परखती है, तराशती है, और फिर उसे उसकी मंजिल दे देती है। तो सुनते रहिए FM रेनबो। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जी हाँ, मुंबई सिटी। 9:27 और 27 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और बात कर रहे हैं ऑल टाइम ग्रेट सिंगर मुकेश जी के बारे में। 1949 में पहली नज़र फिल्म आई और इसका संगीत दिया था अनिल विश्वास जी ने। मुकेश ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, दिल जलता है तो जलने दे। ये गाना पर्दे पर मोतीलाल जी पर पिक्चराइज किया गया, जो कि उनके बहुत ही करीब के रिश्तेदार भी थे। ये गाना दोस्तों सुपरहिट हुआ, लेकिन एक खास बात ये थी कि मुकेश जी केएल सहगल साहब से इतने ज़्यादा प्रभावित थे, इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि उनके रंग में रंगे हुए थे, उन्हीं के स्टाइल में गाने की कोशिश किया करते थे और ये गाना उन्होंने उन्हीं के अंदाज में उन्हीं के स्टाइल में गाया। और जब ये गाना मोतीलाल जी ने सुना तो वो कहने लगे, ये गीत गाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुकेश ने इस गाने को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गाया है और शायद मुझे इतनी अच्छी तरह से गाने में अब तकलीफ़ हो, दिक्कत हो, मैं उस लेवल को ना टच कर पाऊँ जो मुकेश ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौशाद ने मुकेश को उनकी आवाज़ से मिलवाया। जी हाँ, उनकी अपनी आवाज़ से मिलवाया, अपने अंदाज से मिलवाया और उन्हें खुद के स्टाइल में गाने के लिए तैयार किया। उन्हें एक नया अंदाज दिया, एक नई यात्रा इस तरह से उनकी शुरू हुई, जहां पर मुकेश ने केएल सहगल साहब की छवि से बाहर निकलकर अपनी आवाज़ को पहचाना और अपने ढंग से गाया। ये फिल्म थी अंदाज। इसमें मुकेश ने दिलीप साहब के लिए गाया था और इस फिल्म में राज कपूर साहब के लिए गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, जबकि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुकेश बाद में राज कपूर साहब की आवाज़ बन गए थे। ऐसी आवाज़ जो हर दिल तक पहुंचती थी। पर्दे पर राज कपूर साहब गाते थे और मुकेश उनके लिए प्लेबैक सिंगिंग करते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे राज कपूर साहब ही पर्दे पर गा रहे हैं। बाद में मुकेश और नौशाद ने एक साथ बहुत सारे गाने गाए जो बहुत पसंद किए गए। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकेश ने सबसे ज़्यादा गाने शंकर जयकिशन साहब के साथ गाए थे। तो मिलते हैं, यानी अगला गीत सुनते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:40 और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम मस्त मुंबई, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान बात कर रहे हैं ऑल टाइम ग्रेट सिंगर मुकेश जी के बारे में आज उनकी पुण्यतिथि पर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकेश फिल्मों में सिंगर बनना ही नहीं चाहते थे। देखिए कितनी कमाल की बात है कि जो इंसान इतना बड़ा सिंगर बना और वो सिंगर बनना ही नहीं चाहते थे, सच्चाई ये है कि वो हीरो बनना चाहते थे, एक्टर बनना चाहते थे, और उन्होंने एक्टिंग के लिए काफ़ी कोशिशें भी की लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 1941 में निर्दोष फिल्म आई थी जिसमें वो नायक थे, दूसरी 1943 में आई थी आदाब अर्ज, और राज कपूर साहब की आ फिल्म में भी उन्होंने एक गेस्ट रोल किया था, लेकिन एक हीरो के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने सिर्फ गाने की तरफ ही अपना ध्यान पूरी तरह से लगा दिया। मुकेश ने दोस्तों, जहाँ तक उनकी निजी जिंदगी की बात है, पर्सनल लाइफ की बात है, तो उन्होंने सरला त्रिवेदी जी से शादी की थी। सरला जी के पिता एक बहुत बड़े धनी आदमी थे, कह सकते हैं कि मिलेनरी थे, और वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि लड़का फिल्मों में गाने गाता है और ऐसे लड़के से हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे।

0: तो दोनों ने परिवार की रजामंदी के बिना कांदेवली के एक मंदिर में शादी की और इस शादी को करवाया था मोतीलाल जी ने। तब लोगों का कहना था कि ये शादी नहीं चलेगी, लेकिन दोनों की ये शादी पूरी तरह से सफल रही और पूरी ज़िंदगी दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। तो आप सुन रहे हैं FM रेनबो, सुनते रहिए। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज़ें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, 1974 में रजनीगंधा फिल्म आई थी और उसके उसमें गाना था कई बार यूं ही देखा है। इस गाने के लिए मुकेश को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर। संगीत था सलील चौधरी जी का। इस फिल्म के डायरेक्टर थे बासु चटर्जी जी और ये गीत विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर पर फिल्माया गया था। मुकेश ने लगभग 1300 गाने गाए और 1970 के बाद मैं बताना चाहता हूं कि उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रही। उन्हें दिल से जुड़ी कई तरह की समस्याएं रही। मुकेश राज कपूर की आवाज़ बन गए थे और राज कपूर के लिए मुकेश ने लगभग 110 गाने गाए। और सभी जानते हैं कि राज कपूर साहब कहा करते थे कि मुकेश मेरी आत्मा की आवाज़ हैं। राज कपूर साहब के बाद उन्होंने मनोज कुमार के लिए सबसे ज़्यादा गाने गाए। तो चलिए मुकेश जी के बारे में बात करते रहेंगे, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ, मुंबई सिटी। हम बात कर रहे हैं ऑल टाइम ग्रेट सिंगर मुकेश जी के बारे में आज उनकी पुण्यतिथि पर। और चलते चलते मैं बताना चाहता हूँ, अमेरिका में मुकेश जी का एक शो था, दिन था आज ही का यानी 27 अगस्त, और साल था 1976। सुबह जब वो सोकर उठे तो उन्हें सीने में दर्द हो रहा था और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन कुछ डॉक्टर्स कर नहीं पाए, उनका निधन हो गया। इस शो में उनके साथ लता जी भी गाने वाली थी। लता जी ने फ्लाइट पकड़ी और उनके पार्थिव शरीर को लेकर मुंबई आई और लता जी हर पल उनके साथ रही। पूरी फिल्मी दुनिया उनके अंतिम दर्शनों के लिए मुंबई में उमड़ पड़ी थी, बेकरार थी। राज कपूर साहब बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपनी आवाज़ को खो दिया है, और 53 साल की उम्र में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 53 साल की उम्र में मुकेश इस दुनिया से चले गए। लेकिन संदेश दे गए कि जो भी दिल प्यार करेगा वो गाना गाएगा।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं FM Rainbow. ये समय है न्यूज हेडलाइंस का. नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मृत्यु हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता हैं. तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया है. ये बाढ़ महत्वपूर्ण पुलों को अपने साथ बहा कर ले गई है और कई तरह की बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है. महाराष्ट्र के साथ पर्यटक नेपाल में अचानक आई बाढ़ के कारण फंस गए हैं. अधिकारियों के अनुसार इनमें से 4 पर्यटक सुरक्षित हैं और बाकी शेष 3 पर्यटकों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है. सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा. अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है. ये कदम अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच को सीमित करने के उद्देश्य से लगाया गया है जो योग्य अमेरिकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं. आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस.

वेलकम बैक मुंबई। 10:03 और 30 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत। तो चलिए मुकेश जी की उस जो गीत की हम एक यात्रा लेकर चल रहे थे उसे फिर से शुरू करते हैं।

0: रेस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:24 और 46 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और स्लॉट में आपके साथ मैं आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। और आज एक हस्ती के बारे में इस स्लॉट में बात करेंगे और एक छोटा सा सवाल भी मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। पूरी दुनिया में क्रिकेट का कितना क्रेज़ है ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे बहुत सारे लिसनर्स भी क्रिकेट के खेल के बहुत दीवाने हैं। हमारे देश में जैसे बहुत सारे महान खिलाड़ी हुए हैं जिनका बहुत क्रेज़ रहा है, जैसे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी साहब, विराट कोहली। लेकिन आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे, जी हाँ दोस्तों गौर से सुनिएगा, एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जिनके एक रिकॉर्ड को, जी हाँ ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज तक कोई भी खिलाड़ी तोड़ नहीं सका है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 99.94, जी हाँ 99.94 की एवरेज हमेशा बरकरार रखी और उनके इस जो बैटिंग का रिकॉर्ड है यानी बल्लेबाजी की जो ये एवरेज है टेस्ट मैच में, इस रिकॉर्ड को आज तक दुनिया का कोई भी खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया। अगर आप इस खिलाड़ी का नाम जानते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बताएं कि इनका नाम क्या है और ये खिलाड़ी किस देश के हैं। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ज़रूर स्ट्राइक हो जाएगा। अगला गीत बहुत ही प्यारा गीत, मुकेश की आवाज़, फिल्म का नाम अनोखी रात।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:41 हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, एक सवाल किया, आज एक महान बल्लेबाज के बारे में बात कर रहे हैं और उनका एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे कोई भी खिलाड़ी आज तक तोड़ नहीं पाया। टेस्ट क्रिकेट में 99.94 एवरेज इन्होंने हमेशा बरकरार रखी और इस रिकॉर्ड को किसी भी खिलाड़ी ने आज तक इसका मुकाबला नहीं कर पाया, इसे तोड़ नहीं पाया। तो चलिए, जिन लिसनर्स ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। मानखुर्द से प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे और शुभदा जी ने सही जवाब दिया, और हजारीबाग झारखंड से जया जी, दिलीप वाणी, फिरोज सिंगनपुरिया जी, सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश दामोदर कड़ू, पंकज माहौड़ अमरावती से और दिवाकर शिनोय मैंगलोर से, राकेश माथुर जी पुणे से और भालचंद्र फाटक जी, तनुजा शर्मा अंधेरी से, लाली झाजमेर से और सुंदरी ठाकुर उज्जैन से, और दीपा पालकर जी, आप सभी का जवाब सही है। इस महान खिलाड़ी का नाम है सर डॉन ब्रैडमैन। जी हाँ, सर डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के थे और इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में

0: कितना कमाल किया हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो ये एक क्रिकेट का जो स्टंप होता है, यानी जो तीन स्टंप होते हैं जो खेलने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें से क्रिकेट के एक स्टंप को बल्ले के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। और इनके पास खेलने के लिए क्रिकेट की बॉल नहीं थी, ये गोल्फ़ की बॉल से और क्रिकेट स्टंप से क्रिकेट खेलने का अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। इनके पिता एक कारपेंटर थे और इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। यानी बचपन में इनके पास क्रिकेट खेलने के लिए या सीखने के लिए कोई खास फैसिलिटी नहीं थी, सुविधा नहीं थी, लेकिन लगातार अभ्यास ने, इनकी लगन ने इन्हें एक महान खिलाड़ी बना दिया। सर डॉन ब्रैडमैन, इनका नाम दुनिया के जो क्रिकेट का इतिहास है उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स के लिए जमा किया गया है। इन्हें एक महान खिलाड़ी कहा गया है। इनका जन्म, जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म आज ही के दिन यानी 27 अगस्त साल था 1908, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में हुआ था। क्रिकेट इनके लिए सब कुछ था। अपने 20 साल के करियर में इन्होंने 52 टेस्ट मैच खेले, 6,996 रन बनाए, जिसमें इनकी औसत रही, जैसा कि मैंने पहले कहा, 99.94। और अगर ये अपने आखिरी टेस्ट मैच में शून्य पर आउट ना होते तो इनका एवरेज 100 हो जाता। यानी फिर तो ऐसा कमाल हो जाता कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती थी। और ये आखिरी मैच इन्होंने 1948 में खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों, डॉन ने अपने करियर में 29 शतक लगाए, जिनमें 12 डबल सेंचुरी हैं और 6 ट्रिपल सेंचुरी हैं। 1928 से लेकर 1948 तक 20 सालों तक ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहे और इनका हाईएस्ट स्कोर था 334। ये राइट हैंडेड बैट्समैन थे और जब क्रीज पर आते थे तो बड़े बड़े बॉलर्स इन्हें देखकर घबरा जाते थे। तो मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
0: जी हाँ दोस्तों, अगला गीत मुकेश की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे इस कार्यक्रम में सर डॉन ब्रैडमैन के बारे में, दुनिया के एक महानतम बल्लेबाज। 1949 में ब्रिटेन की महारानी ने इन्हें इनके शानदार खेल के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। यानी इसके बाद इनके नाम के साथ, यानी नाम की शुरुआत में सर शब्द जोड़ दिया गया। पहले इनका नाम था डॉन ब्रैडमैन, लेकिन इस उपाधि के बाद इन्हें सर डॉन ब्रैडमैन कहा जाने लगा। तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें याद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और इसी के साथ मैं रविन आपसे विदा लेता हूं, और अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गौर से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा। लव यू ऑल।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र सहित देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। मुंबई के IIT पवई में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और समाचार में आगे, आज महाराष्ट्र में नारली पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर समुद्र को नारियल अर्पित कर सुरक्षित मछली पकड़ने और भरपूर मछली मिलने की प्रार्थना करना कोळी समुदाय की परंपरा है। और समाचार के अंत में, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3 से 4 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। विभाग के अनुसार इस दौरान मुंबई के आसपास के जिलों ठाणे, पुणे और रायगढ़ में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान पालघर जिले में मध्यम बारिश हो सकती है। प्रादेशिक समाचार

Let's celebrate this moment. और यही moment celebrate करने आज आ गई हूँ मैं. कौन सा moment है वैसे बता दें आपको, शर्मीन संग शामिल हो चुके हैं आप सुन रहे हैं 107.1 FM Rainbow. Break free लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं. काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और ऐसे स्पेशल ओकेजन पे मुलाकात हो रही है क्योंकि आज जो है मुझे FM रेनबो के साथ ये रेडियो करते करते जो है ना 12 साल हो गए हैं आप लोगों के साथ. तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, जितने भी हमारे लिसनर्स जिन्होंने आज तक मुझे सुना सराहा और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया. आपके मैसेजेस कॉल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. कई सारे 12 सालों में ऐसी ऐसी यादें आप लोगों ने मुझे दी हैं जो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेंगी. उसके लिए थैंक यू सो मच. आपने सुना इमरान खान की आवाज़ में लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट. तेवर फिल्म से था ये गाना, कौसर मुनीर ने इसे लिखा. और ब्रेक फ्री की जहाँ बात करें तो आज क्या बातें होने वाली हैं. देखिए कितनी अजीब बात है ना कि हम अकेले मूवी देखने, रेस्टोरेंट में बैठने या कहीं घूमने से कभी कभी इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे. जैसे अकेला होना मतलब

मतलब अपने आप में अकेला पड़ जाना हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर अकेले रहना अकेलापन नहीं बल्कि अपनी कंपनी को एंजॉय करना सिखा रहा हो आपको, है ना? क्या हो अगर किसी के साथ की जरूरत और किसी की मौजूदगी की चाह, इन दोनों के बीच एक फर्क हो। आज के ब्रेक फ्री में इसी फर्क की जो है हम बात करने वाले हैं। सो जहां अकेले चलने की बात आ रही है तो चलिए एकला चलो सुनाते हैं आपको। अमिताभ बच्चन की आवाज़ है और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा था और बच्चन साहब ने अपनी आवाज़ से है इस गाने को और भी खूबसूरत बना दिया। कहानी फिल्म से आ रही है गाना, बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

बिल्कुल म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अकेला रहना, अपनी ख्वाहिश से अकेला रहना, किसी प्लेस पे जाना और अपनी कंपनी को एंजॉय करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। और मैंने कहा कि आप लोगों को आज हम ब्रेक फ्री में बताएंगे कि अगर किसी के साथ की ज़रूरत और किसी की मौजूदगी की चाह, ये दोनों में किस तरह से फ़र्क है। बचपन से ही हम कंपनी को जो है वो कंफर्ट के साथ जोड़ते आए हुए हैं ना, दोस्त हो, परिवार हो और हमारे कलीग्स हो, हर जगह किसी ना किसी के साथ हमको जाना होता है। इसीलिए जब अचानक हम अकेले हो जाते हैं ना तो खामोशी थोड़ी सी अजीब लगने लगती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन शायद खामोशी अजीब नहीं है मेरे दोस्त, हम बस उसके आदि नहीं हैं। हम हर खाली पल को किसी बातचीत, किसी स्क्रीन टाइम या किसी इंसान से भरने की इतनी हमको आदत हो गई है ना कि अपने साथ बैठना ही मुश्किल हो गया है। सोचें आप अपनी कंपनी खुद एंजॉय नहीं कर पा रहे, आपकी कंपनी कोई और कैसे एंजॉय करेगा, है ना। तो ये जो खुद की कंपनी एंजॉय करने का सिलसिला है, आप अपने से शुरू करिए और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज आप अपने आप में इतने इम्प्रेस्ड हो चुके होंगे अपने आप से कि सामने वाला आपसे अपने आप इंप्रेस हो ही जाएगा। इतना सारा इंप्रेशन क्रिएट करने के बाद आए आपको सुनाते हैं अकेले हैं तो क्या गम है। मजरू साहब ने से लिखा, आनंद मिलन की कॉम्पोजिशन कयामत से कयामत तक, इस फिल्म से आ रहा है गाना, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजें हैं।

0: या ना तो आई थिंक वो खुद अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा होगा और वो तुम्हें भी यही सिखा रहा है कि अपनी कंपनी एंजॉय करो. अर्जुन कानोंगो एंड मोमिना मुस्तसन की आवाज़ों में सुना आपने ये गाना आया ना तू. ये तो नहीं आए, मैं वापस आ गई हूँ ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम लेकर. शर्मीन संग शामिल है आप और इस प्रोग्राम में 107.1 FM रेनबो पर आपको आज हम बता रहे हैं कि कैसे कहीं अकेले जाना या अपनी कंपनी एंजॉय करना बुरा नहीं होता. जब आप पहली बार कोई काम अकेले करते हैं, चाहे अकेले मूवी देखना हो, अकेले बाहर खाना खाना हो या किसी नई जगह जाना हो, तो एक छोटी सी चीज़ बदलती है. आपको एहसास होता है कि अरे ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, है ना. और यही एहसास धीरे धीरे जो है आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट जो है वो बढ़ाता है, इन चीज़ों में बदल जाता है. और क्योंकि जब आप अपनी कंपनी पर भरोसा करना सीखते हैं, तो हर फैसला लेने के लिए किसी और की मंजूरी की ज़रूरत जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है. ऐसे एकदम से नहीं होगा, लेकिन आप जाया करें अपने साथ, अपनी कंपनी एंजॉय किया करें. आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा कि आप इतने बुरे भी नहीं हैं, आपकी कंपनी इतनी बुरी भी नहीं है. जब आपके दोस्त आप लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो आप खुद अपने साथ क्यों नहीं खुश रह सकते, है ना. आए इसी थॉट के साथ आपको अगला गाना सुनाते हैं और ये आ रहा है संबंध इस फिल्म से. संबंध किसी के साथ कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन चल अकेला चल, हाँ ये जो थॉट है ये बना रहना चाहिए. प्रदीप ने इसे लिखा, ओपी नैयर की कॉम्पोजिशन, मुकेश जी इसे गाएंगे. लेकिन उससे पहले है ना, मैं आपको एक स्पॉट प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये गाना कट हो जाए. स्पॉट नहीं, एक छोटा सा प्रोमो आएगा और उसके बाद हम स्पॉट प्ले करने वाले हैं, तो ये गाना कट ना हो. इसके लिए जो है मैं आपको एक प्रोमो सुनाती हूँ और उसके बाद आए सुनते हैं स्पॉट, और उसके बाद आएगा ये वाला गाना. बने रहिएगा इसी फ्रिक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स.
1: नए जमाने की नई तस्वीर. अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए. समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें. ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश. इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स. इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स. और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं. डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश.

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

हाँ जी, दोस्त की गाड़ी, दोस्त की यारी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इट्स ऑल्सो अबाउट कि अपनी कंपनी आप खुद कितनी एंजॉय करते हैं। आज का हमारा ब्रेक फ्री का टॉपिक यही है। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, और ब्रेक फ्री प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, या मैं कहूं कि हम प्रोत्साहित कर रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरह से हम जो है अपनी खुद की कंपनी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। कितनी चीज़ें देखें, हम सिर्फ इसलिए टाल भी देते हैं कि क्योंकि कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं होता है ना, कोई फ्री होगा तो चलेंगे, किसी को पसंद होगा तो मूवी देखेंगे, कोई साथ होगा तो ट्रैवल करेंगे, और कभी कभी इस इंतज़ार में ना वो एक्सपीरियंस जो है वो आप ले नहीं पाते हो, मिस कर देते हो। ज़िंदगी का हर प्लान किसी और के फ्री होने का इंतज़ार नहीं कर सकता भाई, कुछ प्लान अपने नाम भी होने चाहिए। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, है ना, इंसान है, रिश्ते ज़रूरी हैं, कनेक्शन ज़रूरी है, लेकिन एक खूबसूरत बैलेंस ये भी है कि आप किसी के साथ इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि आप उनके साथ रहना चाहते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अकेले रह नहीं सकते, है ना। आप दिल से चाहें तब उनके साथ रहें, उनकी कंपनी एंजॉय करें, लेकिन ऐसे ना हो कि आप अकेले रह ही नहीं सकते। अपनी कंपनी को एंजॉय करना भी एक स्किल है, और अच्छी बात यह है कि इसको धीरे धीरे जो है आप सीख सकते हैं, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीख ही जाएंगे कभी ना कभी। तो अगली बार अगर आपको आपका कोई प्लान सिर्फ इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके साथ जाने वाला कोई नहीं है, तो प्लान आपने कैंसिल नहीं करना है, आपने जो है कंपनी बदल दीजिए, आप अपनी कंपनी के साथ चले जाइए, कॉफ़ी पीजिए, वो मूवी देखिएगा, और उस जगह घूम आइए जहाँ जाने का आपका मन था। क्योंकि कभी कभी अकेले होना इस बात का जो है इंडिकेशन होता है कि ज़िंदगी आपको पीछे

0: उड़ नहीं रही है, बल्कि ये वो जगह है जहां जिंदगी आपको खुद से मिलने का थोड़ा वक्त दे रही है। तो आप ये सारे जो सिग्नल्स हैं उनको कैच कर लीजिए और सीखिए इस स्किल को, जो है वो सीखते जाइएगा। बाकी यहाँ गाने तो मैं प्ले करते जाऊंगी ही, है ना, हमारे पास अभी भी वक्त है। लेकिन ये जो बात है अपनी कंपनी को एंजॉय करने की, ब्रेक फ्री में हमने इस चीज़ को लिया, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपके जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो पीछे छूट जाते हैं। आप इंटेंशनली उनसे वास्ता तोड़ देते हो, या फिर कभी कभार ऐसा होता है लोग इतने बिजी चल रहे हैं ना, आप किसी को ऐसे मतलब पकड़ के रख भी नहीं सकते कि मेरे सारे प्लान्स जो हैं वो मेरे साथ ही आएंगे। इवन आपके जितने भी खास फ्रेंड्स भी क्यों ना हो, ये आप मेरे ख्याल में उनके साथ भी ज़्यादती कर रहे हो। तो ऐसे है कि आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय कीजिएगा, और जब वक्त मिले आप दोनों फ्रेंड्स का अगर टाइम सेट हो जाता है तो वो तो मतलब सोने पर सुहागा ही हो जाएगा कि आप मिलके फ्रेंड्स के साथ जो मस्ती करते हैं ना, वो तो है अपनी जगह। लेकिन आज हमने आपको ये जो बात कही है वो है अपनी कंपनी को एंजॉय करने की। एंड यस, आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच सारी विशेस के लिए। ये ऐसे ही प्यारे प्यारे मैसेजेस देकर आपने मेरे 12 साल जो है इतने यादगार बना दिए FM रेनबो पर, उसके लिए ज़रा सा झूम लूँ मैं। आप भी झूम जाइएगा। आशा भोसले जी की आवाज में आ रहा है ये गाना। इसको ना हम आपको सुनाएंगे, थोड़ी देर में सुनाएंगे, एक छोटा सा स्पॉट जाएगा उसके बाद सुनाएंगे। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: EKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

हाय नीति मोहन की मखमली आवाज में आपने सुना ये गाना, सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा, संजय लीला भंसाली की कॉम्पोजिशन, पद्मावत से सुना आपने ये गाना। ब्रेक फ्रीज प्रोग्राम में शामिल हैं आप, शर्मीन संग 107.1 एफएम रेनबो ट्यून इन किया है आपने। और नैनो की बात अचानक से क्यों आ गई? देखिए, हम बात कर रहे थे ना अपनी कंपनी को एंजॉय करने की, खुद के साथ खुश रहने की, ये भी अच्छी बात है, लेकिन एक और खूबसूरत बात ये भी है कि हमारी जिंदगी जो है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है ना, कभी कभी हम जाते जाते भी किसी की जिंदगी में कुछ छोड़ जा सकते हैं। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है और नेत्रदान से जुड़े मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को दूर करना और मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिए लोगों को इंस्पायर करना इस अभियान का हिस्सा है। तो आज अपनी कंपनी के साथ आप थोड़ा वक्त बिता ही रहे होंगे मेरे कहने के बाद, तो ये भी सोचिएगा कि हमारी वजह से किसी और की दुनिया कैसे रोशन हो सकती है। इसी के साथ ब्रेक फ्री को रोकने का वक्त हो चला है। आपको बता दें 12 बजे आप न्यूज एंड हेडलाइंस सुनेंगे हिंदी में बिल्कुल लाइव, और 12:02 पर म्यूजिक कैफे ओपन हो जाएगा जो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रहने वाला है ओपन। तो जल्दी जल्दी उस कैफे में आइएगा आप। अभी के लिए आंखों की नैनो की बातें हो रही हैं, तो आए ये वाला गाना सुनाते हैं आपको कुमार सानू की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा, जतिन ललित की कॉम्पोजिशन, खामोशी द म्यूजिकल से आएगा, आंखों में क्या।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इसमें खेल, युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण आदि पहलुओं पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत इस कार्यक्रम में IIT पवई से भी युवा शामिल हुए। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रसुआ क्षेत्र में हुई इस त्रासदी में 160 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच भारत सरकार ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। और समाचार में आगे, मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विश्व का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कंटेनर बंदरगाह बनकर उभरा है। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बंदरगाह ने वैश्विक स्तर पर 21वां स्थान हासिल कर लिया है। इस बंदरगाह ने वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंटेनर परिवहन में 13.6% की वृद्धि दर्ज की है। और समाचार के अंत में, मुंबई पुलिस के मादक पदार्थ रोधी सेल ने बांद्रा टर्मिनस के पास 10 करोड़ रुपए की चरस बरामदगी के मामले में मुख्य पेट्रोल को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने आज बताया कि आरोपी नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था। उसे बिहार की स्थानीय पुलिस की मदद से पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार किया गया। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शर्मीन संग शामिल हो चुके हैं आप, मुझे पता है आपके मैसेजेस बता रहे हैं और म्यूजिक कैफे की शुरुआत हो गई है। आज का हमारा म्यूजिक कैफे ना थोड़ा सा अलग है। आज हम पहुंचे हैं एक पुरानी रिकॉर्ड शॉप में जहां शेल्फ्स पर सजी हैं ढेरों विनिल और वो रिकॉर्ड्स जो बहुत ही पुराने हो गए हैं, अब आसानी से मिलते भी नहीं हैं, है ना, लेकिन अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठे हैं। तो क्यों ना आज इन रिकॉर्ड्स में से कुछ ऐसी धुनें चुने जो हमारी दोपहर को थोड़ा और खूबसूरत बना दे, है ना। तो पहला रिकॉर्ड प्ले कर दें हम, साथिया हो जाए। साथिया इस फिल्म से आ रहा है ये गाना। सोनू निगम की आवाज, गुलजार साहब ने से लिखा, ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: क्या बात है, कुछ आवाज़ें कुछ गाने इतना सुकून दे जाते हैं ना। उन्हीं में से जो है ये एक गाना था और उन्हीं में से एक आवाज़ रोंकिनी गुप्ता की आपने सुनी। तुम्हारी सुलु इस फिल्म से था ये गाना। शांतनु घटक ने इसको लिखा और कंपोज किया था। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप। म्यूज़िक कैफ़े ओपन है और जैसे कि मैंने आपसे कहा है, बस आधे घंटे के लिए ये कैफे ओपन रहने वाला है आज, क्योंकि 12:30 बजे जो है आप एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन पाएंगे जो कि आधे घंटे के लिए जाएगा। सो, जहां हम इस कैफे की बात कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड स्टूडियो शॉप में ही ये कैफे लगा हुआ है आज हमारा। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते हैं ना, वो हमें कहीं पहुंचा देते हैं, किसी पुराने दिन में, किसी याद में, या किसी ऐसे पल में जिसे हम भूल चुके थे और वो गाना सुनते ही अचानक जो है हमको वो सारी यादें एकदम से जो है वो ताज़ा हो जाती है। आपके पास भी कोई ऐसा गाना है? होगा ही, है ना, जैसे सुनते ही आप कहते होंगे ये गाना तो मेरा है। कोई ख़ास वजह हो या ना हो, कुछ धुनें जो हैं बस हमारी हो ही जाती है। तो अगला गाना भी कुछ ऐसा ही है। सिया रातों में अक्सर कई लोग इसे प्ले करते होंगे, उन्हें न जाने कौन से राबते याद आते होंगे। ये हम ज़रूर प्ले करेंगे, आप तब तक गेस कीजिएगा कौन सा गाना है, लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा स्पॉट आएगा और उसके बाद वो गाना प्ले हो जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा इसी फ्रिक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

क्या बात है, कपूर एंड संस से सुना आपने ये बहुत ही प्यारा गाना बोलना माही बोलना। अरिजीत सिंह असीस कौर की आवाज़ें थी, डॉक्टर देवेंद्र काफिर ने इसे लिखा, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। म्यूजिक कैफे ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हमारा कैफे लगा हुआ है एक पुरानी सी रिकॉर्ड स्टूडियो में, जहाँ पे कैफे भी है और वो रिकॉर्ड स्टूडियो भी है। कई सारे जो है ऐसे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, पोस्टर्स लगे हुए मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही पुरानी सी फिल्मों की याद दिला देंगे, लेकिन वो फिल्में जो आज भी बिल्कुल ताज़ा हैं, और कुछ ऐसे गाने जिनको बस कुछ चंद ही साल हुए हैं लेकिन फिर भी जो है वो खुशबू जो है ना उनमें वो बिल्कुल ही नहीं है। और हमारी ये जो म्यूज़िक आफ्टरनून है वो ऐसे ही गानों के साथ भरी रही। म्यूज़िक सिर्फ मेमोरीज़ वापस लाने के लिए नहीं होते, कभी कभी एक सही गाना जो है वो हमारी पूरी आफ्टरनून की एनर्जी बदल देता है ना। तो जी, कुछ यादें हमको मिली इस म्यूज़िक कैफे में, कुछ मूड्स बदले हैं आई होप, और कुछ खूबसूरत धुनें हमारे सॉन्ग बुके में शामिल हो गई थी। तो अब म्यूज़िक कैफे से जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 12:30 बजे आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन पाएंगे, और फिर 1 बजे जो है आप न्यूज़ सुनेंगे, और 1:05 पर हिट एंड हॉट आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट का चहिता प्रोग्राम लेकर हाजिर हो जाऊंगी मैं। क्या थीम है, क्या किस तरह के गाने आपने रिक्वेस्ट करने, मैं उस यार में आपको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी म्यूज़िक कैफे से जाते जाते आएँ आपको एक और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गाना सुनाते हैं। मिथुन की आवाज़ है, दीपाली साथ देंगी, सईद कादरी ने क्या ही खूब लिखा है इसे, मिथुन की कॉम्पोजिशन, की एन का से आ रहा है ये गाना, जी हुजूरी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुँचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
2: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
0: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
2: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहां चल रहे हैं?
2: अजीत जी चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहाँ मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
0: क्या बात है, जहाँ मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रहे हैं आप?
2: नहीं नहीं अजीत जी बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहाँ के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
2: जी चलिए श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछते हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
0: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
2: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ?
0: विमलेश जी यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
2: जी।
0: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है। जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
2: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर,
0: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है।
2: जी
0: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक।
2: जी
0: यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
2: 12 मीटर यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा।
0: जी जी तो विमलेश जी अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है।
2: बिल्कुल,
0: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
2: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
0: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है। ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है।
2: जी, अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
0: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
2: जी,
0: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
2: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं
0: जी।
2: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
0: इमलेश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
2: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
0: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। मिमलेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
2: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
0: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते
2: जी।
0: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
2: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
0: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
2: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
0: भला वो क्या?
2: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
2: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसी

0: चैनल विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ, बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
6: अरे, यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
6: हाँ, वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
6: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई, चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: क्योंकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
4: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
6: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
4: हाँ।
6: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश

0: भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
0: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
2: अच्छा।
0: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
2: अच्छी अर्थव्यवस्था।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
8: इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
6: जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
9: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
10: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
11: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
10: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
12: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
4: तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
6: चेतना,
5: जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो. शर्मीन संग शामिल हो चुके हैं आप. हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम शुरू हो गया है जिसमें आपकी पसंद के गाने प्ले होते हैं. सो आज की थीम फटाफट आपको बता दूं ताकि आप अपने सॉन्ग्स फेवरेट सॉन्ग्स भेज सकें. सो आज की थीम कुछ यूं है, ऐसे गाने आपने रिक्वेस्ट करने जो जब जब आप उनको सुनते हो ना तो आपको लगता है कि वो आपको हील कर रहे हैं. ऐसे सॉन्ग्स जो आपको हील करते हैं, इस तरह के गाने भेजिएगा 8657661071 पर. अपना नाम लिखना ना भूलें. 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. सो आए अभी के लिए आपको सुनाते हैं जमाना लगे. आप जमाने लगा मत देना क्योंकि ये सिर्फ एक घंटे का शो है. जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट भेजिएगा. अरिजीत सिंह, शाश्वत सिंह की आवाजें, मेट्रो इन दिनों से आएगा ये गाना. कैसरुल जाफरी, संदीप श्रीवास्तव ने इसको लिखा. प्रीतम की कॉम्पोजिशन.

क्या बात है लुटेरा, इस फिल्म से सुना आपने ये बहुत ही प्यारा गाना। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसको लिखा, वही गा रहे थे। योगेश की रिक्वेस्ट पर सुना आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपकी पसंद के गाने हम प्ले करते हैं। और मैंने आपसे कहा है आज की थीम आपको बताई है कि ऐसे गाने आपने रिक्वेस्ट करने हैं जो गाने आप जब भी सुनते हैं ना आपको लगता है वो आपको हील कर रहे हैं, है ना। इस तरह के सॉन्ग्स जो जब जब आपने सुने हैं वो गानों ने आपको हील किया है। अपने नाम के साथ अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजिएगा 8657661071 पर। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और

आकांक्षा मनोज सिन्हा ने हमें रिक्वेस्ट किया है एक गाना बर्फी इस फिल्म से. वो कहती हैं कि इतना प्यारा गाना है, ये उन्हें हमेशा हील करता है. और साथ ही साथ प्रणव शिंदे कहते हैं कि आज फिल्म बादशाह को 27 ईयर्स हो गए हैं और उनकी ये फेवरेट फिल्म है. और वो कहते हैं कि जिस तरह से ये बादशाह मूवी है, आप भी जो है वो रेडियो के बादशाह हो. और मुझे विश किया है मेरे 12 साल कि ये जो जर्नी रही है एफएम रेनबो, बहुत सारा कुछ उन्होंने लिखा है. थैंक यू सो मच प्रणव जी. और उन्हीं के रिक्वेस्ट पर हम आपको सुनाएंगे बादशाह फिल्म से हम तो दीवाने हुए यार. लेकिन अभी के लिए आए सुनते हैं बर्फी फिल्म से ये गाना. रेखा भरद्वाज गाएंगी, सईद कादरी ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन. आकांक्षा के रिक्वेस्ट पर आ रहा है फिर ले आया दिल.

प्रणव शिंदे की रिक्वेस्ट पर सुना आपने ये गाना, हम तो दीवाने हुए यार। और फिल्म थी बादशाह, गा रहे थे अभिजीत, अलका याग्निक, समीर ने इसको लिखा था। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने आपसे पूछा है कि ऐसे गाने रिक्वेस्ट करिएगा जो जब जब आपने सुने हैं, उन गानों को आपने सुना है, उन गानों ने आपको हील किया है, तो इस तरह के

सॉन्ग्स आपने भेजने हैं 8657661071 पर, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं हम, सॉन्ग रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 1:30 बजे आप मराठी में समाचार सुन पाएंगे हमारे न्यूज़ स्टूडियो से, राष्ट्रीय मराठी समाचार, और 1:40 पर हिट एंड हॉट लेकर आपकी सारी सॉन्ग रिक्वेस्टें लेकर मैं दोबारा से हाजिर हो जाऊंगी। सो मीनवाइल आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजकर रखिएगा, वक्त रहा तो ज़रूर प्ले होंगी। लेकिन अभी के लिए आपको सुनाते हैं शुभ लक्ष्मी जी और फिरोज सिगनपुरिया जी ने इस गाने की हमें रिक्वेस्ट की है। अभिमान फिल्म से आपको सुनाते हैं लता दीदी की आवाज में, मजरू साहब ने इसको लिखा है, SD बर्मन जी की कॉम्पोजिशन, पिया बिना क्या ही प्यारा गाना है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों, मतलब मैं हर जो मैसेज है वो रीड नहीं कर सकती क्योंकि ये शो जो है वो आपकी सॉन्ग रिक्वेस्टों के बारे में है। लेकिन मैं जो भी आप लोग मुझे विशेस भेज रहे हैं 12 साल पूरे होने पर FM रेनबो पर, वो मैं सारे रीड कर रही हूँ। और बहुत बहुत ही मुझे आप लोग ये जो अच्छा अच्छा फील करवा रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी के लिए पिया बिना ये सुनते हैं, बहुत ही प्यारा गाना। फिर लौट आते हैं 1:40 को हिट एंड हॉट में आपकी सॉन्ग रिक्वेस्टों के साथ। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

क्या बात है, बजरंगी भाई जान से सुना आपने ये गाना और इसे गा रहे थे राहत फतेह अली खान, साथ दे रही थी रेखा भारद्वाज, नीलेश मिश्रा ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे आपके फेवरेट सॉन्ग्स बताइएगा, ऐसे गाने जो जब भी आप सुनते हैं वो गाने जो है ना वो आपको हील करते हैं। सो अजय सखरे जी ने इंदौर से हमें इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, जिंदगी कुछ तो बता, और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ही कम रह गया है और आप लोगों की सॉन्ग रिक्वेस्टें इतनी सारी है कि बिना वक्त ज़ाया किए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ये सॉन्ग की रिक्वेस्ट हमें की है सारंग काटकर ने सोलापुर से, और वो सुनना चाह रहे हैं उड़ता पंजाब से ये वाला गाना। आए उनके लिए प्ले करते हैं, और ये गाना है शाहिद माल्या की।

0: क्या बात है। लाल सिंह चड्डा से सुना आपने ये गाना, अरिजीत सिंह शिल्पा राव की आवाज़ें, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन, और राकेश माथुर जी की रिक्वेस्ट पर सुना आपने ये गाना।
1: संग तेरा
0: आए है, और संग आपका जो है मेरा और आपका संग यहीं तक था, लेकिन कोई बात नहीं, सैटरडे को हमारी मुलाकात फिर से होगी, यही 11 to 2 का जो शो होता है उसमें मैं मिलूंगी आपसे। और जाते जाते दीपा पालकर की रिक्वेस्ट पर हम सुनाएंगे आप सभी को गोलमाल फिल्म से ये गाना, आने वाला पल जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला है, लेकिन फिर से लौट कर आएगा सैटरडे को 11 से 2 के बीच।

बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस का। अमित भगत दिग्दर्शन और कविता दादर से बाबा, विजेंद्र जी अकोला से, प्रणव शिंदे, राकेश माथुर, मीरा सिंह, अभिजीत गवनकर जी और उनकी फैमिली, मिंटू पिंक की और बाकी सब उनकी फैमिली, फिरोज सिगनपुरिया जी, शुभदा, पंकज मोहोड़, गुरमीत सिंह, मीता सिंह, शुभलक्ष्मी जी और हमें जितेंद्र पाटिल जी ने महाराष्ट्र से मैसेज किया था। हमें मैसेज आया था टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा और इनकी फैमिली का, आकांक्षा, मनोज सिन्हा ने मैसेज किया था, मुकेश कश्यप उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, संदीप कुमार, प्रमोद जिनचोलकर जी, दीपा पालकर, अजय सखर इंदौर से और हमें तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन ने मैसेज किया था, सारंग ने मैसेज किया था, हरमानी वर्मा उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, जॉन डिकोस्टा और उसकी उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, जितेंद्र दास जी हमें सुन रहे थे, मेहर अरोरा जी और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपके मैसेजेस का और सारे विशेस का। 12 साल ऐसे ही आपके मैसेजेस और बहुत ही प्यारे कॉल्स के साथ और इतने सारी चीज़ें एफएम रेनबो पर जो है हमने ट्राई की है, मेरी तरफ से जो है वो मैंने ट्राई किया है कि आपको एंटरटेन करते रहें और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बस आपका प्यार जो है वो ऐसे ही बनाए रखिए गा और जाते जाते जैसे कि मैंने कहा है आपको सुनाते हैं गोलमाल फिल्म से ये गाना, आने वाला पल जाने वाला है, आरडी बर्मन जी की कॉम्पोजिशन, गुलजार साहब के अल्फाज, किशोरदा की आवाज, अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें सामईन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली

0: हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
1: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फक्र की बात है।
0: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान

0: नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल्कि महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल्कि एक टीम तैनात की गई है।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो वर्षों से हमारे जो जवान हैं उनकी वीरता, उनके अनुशासन, उनके समर्पण, उनके त्याग की कहानियां आपके बीच लेकर के आता रहता है। उन्हीं की जुबानी आप सुनते हैं उनकी कहानी। लेकिन आज हम आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज उन सीधे उन सैनिकों तक पहुंचाएंगे जो इस समय शायद किसी बर्फीली चौकी पर हैं, किसी तपती सीमा पर हों, किसी जहाज पर, समुद्री जहाज पर, या किसी ऑपरेशन के बीच खड़े हैं। आज का संदेश टू सोल्जर्स पूरी तरह समर्पित है आपके संदेश, आपकी दुआओं, आपके गर्व की, और गर्व की बातें जो उनकी होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, इसी अभिमान की मैं बात कर रही हूँ।

और हमारे सैनिक अपने परिवार से महीनों महीनों बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारी ओर से एक छोटा सा संदेश जब पहुंचता है तो शायद उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी तो एक सैनिक ने कहा था कि सरहद पर सबसे मुश्किल रातें तब आसान होती हैं जब लगता है ना कि देश वाले हमें याद कर रहे हैं। ये बात सच है, क्योंकि देशवासियों का जो प्यार है, भरोसा है, उससे भी लड़ते हैं वो। तभी तो सियाचिन में तैनात एक जवान ने लिखा था ये संदेश कि माँ, यहाँ तापमान -30 है, लेकिन जब कोई बच्चा पत्र लिखता है, संदेश भेजता है कि भैया आप हो इसलिए हम सुरक्षित हैं, तो मेरे ना दिल का तापमान गर्म हो जाता है। बस यही भाव, यही रिश्ता हम जोड़ना चाहते हैं। 9868107070 हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है और कार्यक्रम में बहुत खास संदेश टू सोल्जर।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। इस शो में आज आपके साथ हूँ मैं शैली भाषांजलि। अमूमन हमारे साथ होते हैं देश के जाबाज, जो रूबरू हमारी बातचीत होती है उनसे आप सुनते हैं और गर्व करते हैं। लेकिन आज आपका गर्व पहुंचाने का काम मैं कर रही हूँ, सूत्रधार हूँ। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपका आपके दिल का संदेश है, जो भी आप महसूस करते हैं ज़रूर लिखिएगा। युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करने वाले हमारे सशस्त्र बल मुश्किल की हर घड़ी में तो साथ खड़ा ही दिखते थे, लेकिन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा हो, राहत, बचाव, पुनर्वास, इन सब में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। याद दिलाना आवश्यक है, महसूस करना हर पल आवश्यक है। कई बार

वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना भी एक चुनौती होता है। और मीरा जी लिखती हैं, पता नहीं कहां से लेकिन लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, आप सरहदों की रक्षा नहीं करते, हमारे सपनों की भी रक्षा करते हैं।

संदेश टू सोल्जर्स का कार्यक्रम में हम दोहराने की ये कोशिश करते हैं, बात आप तक पहुंचाते हैं कि जब भी कोई क्षेत्र आपदा में घिर जाता है तो सशस्त्र बल केवल राहत सामग्री नहीं पहुंचाते बल्कि लोगों को कठिन समय से निकाल करके भी लाते हैं। फिलहाल का समय बहुत ही कठिन है नेपाल के लिए भीषण बाढ़ की वजह से, लेकिन भारत एक तत्पर, एक सजग, एक देश की तरह अपने सशस्त्र बल की मदद से इनका बचाव भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, कई जिंदगियों के लिए उम्मीद भी बन जाते हैं। और हमारे सशस्त्र बल की सेवा केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान है उसमें वे हाथ बढ़ाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि वर्दी का अर्थ केवल शक्ति नहीं, अनुशासन, साहस और मानवता सबसे बढ़कर।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज सोल्जर्स की ही बातें कर सकते हैं, बहुत गर्व के साथ बातें करते हैं। अब जो पूरा देश जो बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ भाई अपने घरों से बहुत दूर हैं, देश की सीमाओं पर हैं। किसी बहन की राखी आज पहुंचेगी शायद डाक से उनके पास, किसी की वीडियो कॉल पर बंधेगी और किसी बहन की कलाई खाली होगी, भाई की कलाई खाली होगी, क्योंकि उनका भाई देश की रक्षा में तैनात है। लेकिन सच तो यह है कि सैनिक सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करता, पूरे देश की रक्षा करता है। आज संदेश टू सोल्जर्स में देश के हर वीर जवान को एक राखी, एक अनदेखी राखी, वो धागा आपकी कलाई तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन देश की हर बहन की दुआ आपके साथ है।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। और ये कार्यक्रम तभी पूरा होता है जब आप जुड़ते हैं अपने मैसेजेस के साथ, अपने भाव के साथ। शांताचारा बाडिगर कोकनूर, एम आई राइट? ओके, भाव की तरफ ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे क्षमा चाहूंगी। लेकिन दावानागरी से लिखते हैं कि कार्यक्रम इसलिए वंडरफुल होता है ना शांताचारा जी, बिकॉज सैनिकों के बारे में होता है। आप जुड़े हैं इस शो के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं ककरोला द्वारका से, एंड ही सेंडिंग हिज हार्टिएस्ट लव टू द इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन। एंड बहुत सारी प्यारी बातें, डिवोशन, डेडिकेशन की उनको उनके बारे में लिखी है, एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स और सल्यूट करते हैं उनको। यशवंत जी लिखते हैं अपने भाव के साथ, और मंजू भाटिया जी कहती हैं कि हमारी सीमा पर तैनात सभी सैनिकों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने हर मिशन में आप कामयाब हो, यही हम चाहते हैं। जी हाँ, रक्षाबंधन एक ऐसा धागा जिसमें विश्वास बंधा है, सुरक्षा का वादा है, वो ये करते हैं। इसलिए आज आपकी आवाज उन तक पहुंचे, आपकी दुआ, आपका गर्व, आपका सम्मान, आपके भाव, आपके शब्द, इसी उद्देश्य से तो ये शो बना है। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि आपकी बात को उन तक जोड़ूं और पहुंचाऊं।

आकाशवाणी के इस चैनल में आप जुड़ रहे हैं संदेश टू सोल जैसे बहुत ही खास दिल के करीब यह कार्यक्रम होता है। हम जानते हैं कि सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, कोई धूप में तपकर, कोई छांव में रहकर अपने हिस्से की जमीन कमा रहा है, रोटी कमा रहा है, थकता है, मुस्कुराता है, चलता है, फिर लग जाता है। लेकिन स्पेशली उनकी बात करना चाहूंगी, उन माताओं को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने देश को अपने बेटे दिए हैं, उन बहनों

सलाम करना चाहूँगी जिन जो भाई के लौटने का इंतज़ार करती हैं, स्पेशली जब राखी आती है तो उनके इंतज़ार में बहुत ही एक एक, एक तत्परता बन जाती है। उन सैनिकों को प्रणाम करूँगी जिनकी वजह से हम त्यौहार मना पाते हैं। और यही बात कहते हैं अनिल जी, अनिल कुमार, गेंडा खाली चिलिया घोल टनकपुर ज़िला चंपावत उत्तराखंड से। इन्होंने लिखा है और यही कहा है कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी है, पर ये भी कहा है कि सुरक्षा के साथ हम कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं उनकी वजह से। हैप्पी राखी, हैप्पी हैप्पी लॉट ऑफ विशेज इज रिटन। दिस इज श्री रंगम राजेश फ्रॉम तमिलनाडु। आप सुनिए ये गीत, हम फिर आते हैं। मैसेजेस का सिलसिला यहाँ बन चुका है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। संदेश टू सोल्जर्स में आप अपने संदेश भेज दीजिए। दिस इज द प्रोग्राम विच रीचेज स्ट्रेट टू द सोल्जर्स एंड द हार्ट्स।

इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, किन्होंने, यश सिंधे ने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि सरहद पर जो खड़े हैं सीना ताने, वही तो इस पावन राखी का असली मान है। जो घर नहीं आ सकते वतन के खातिर, उन भाइयों के लिए दिल से दुआ आती है, बिल्कुल आती है दिल से। रेशम का धागा भले सरहद तक ना पहुंचे, पर हर बहन की दुआ आपको महफूज रखती है। बिल्कुल सही बात है, न जाने कैसे आपके दिल तक पहुंच जाती है। और यही बात यश शिंदे जी ने लिखी है। और हमारे पास मैसेज आया विपिन नेहरा का देहरादून से, एंड ही इज आल्सो विशिंग यू नो वॉर्म विशेस ही इज सेंडिंग टू ऑल द सोल्जर्स। और ये शो अच्छा, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, इसी तरह से प्यार से आप जुड़े रहिए हमारे शो से, संदेश टू सोल्जर्स। ये हमारा शो है, सोल्जर्स की ईशान में हमेशा जी करता है कि कुछ ना कुछ बोले। बहुत सारी बातें उन पर लिखी गई हैं, लेकिन ये बात बहुत प्यारी लगती है मुझे। शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जानते होंगे इसके बारे में कि देवों के सिर पे चढ़ जाऊं, भाग्य पे इठलाऊं, ये चाह नहीं है, बस तोड़ लेना वनमाली मुझे, उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक।

और इसी के साथ ही हम रसराज जी, प्रीतम जी और राजकुमार संतोषी जी का, जी के मैसेज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं ना संदेश टू सोल्जर्स के कार्यक्रम में, जब हम आते हैं सूत्रधार के रूप में, आपकी भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर माइक के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, तो एक अलग भावना में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो बर्फीली हवाओं में जो डटे सैनिक हैं, कभी समुद्र की अनदेखी गहराइयों में तिरंगे की शान उसकी रक्षा करने जो जो नेवी के जाबाज हैं, जो आसमान में सरहदों की जो चौकसी कर रहे हैं, एयरफोर्स के जो शूरवीर, जो पायलट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, इन सभी की अनगिनत कहानियां आप तक आती रहेंगी संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिस तरह से दिल से आप जुड़ते हैं, उस तरह से दिल से, प्यार से, मन से, भाव से, आदर से हम अपने सैनिकों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे।

गल्यांसाखली सोन्याची ही पोरी कोनाची, ही पोरी कोनाची ये तो पता करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ जुड़ जाइए लव यू जिंदगी कार्यक्रम में। मैं हूं आप ही का आरजे आदित्य धाईगुड़े, और इमेजिन करिए यही गीत एफएम पर चल रहा है। 27 अगस्त 2026 की ये शाम है, काम खत्म करके आप घर लौट रहे हो, ट्रेन से, ट्रेन की खिड़कियों से दूर दिखता विशाल सा दरिया, तुम आज भी उससे कई सवाल पूछोगे, पूछोगे कि क्या मैं मिल सकूंगा उन गुजरे हसीन पलों से, जैसे तुम मिलते रहते हो धरती से कुछ पलों के अंतराल से, क्या वो हाथ से फिसली रेत फिर समेट लूं तो मिलेगा वही एहसास जो उस गुजरी हुई मखमली रेत में हुआ करता था। दूर से किसी तरंग में से आपको आवाज आएगी, दरिया के जवाब का आज इंतजार मत करते बैठना किसी किनारे पर, दरिया आज नहीं मिल पाएगा तुमसे किनारे पर, क्योंकि आज दरिया पहुंचा होगा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक राज्य के किसी समुद्र तट के कोली समाज की बस्ती में, किसी कोलीवाड़े में चल रहे नारली पूर्णिमा के सेलिब्रेशन में।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: फिर एक बार स्वागत है आप सभी का. मैं हूं आपका आरजे आदित्य धाईगुड़े और इस ब्लू गाने के साथ साथ समुंदर किनारे मैंने पहुंचा दिया आप सभी को और हम शुरू करेंगे जश्न नारली पूर्णिमा का, क्योंकि अब से कुछ ही देर में पश्चिमी समुद्र तट के कोली भाइयों में घुल जाएगा नारली पूर्णिमा का उल्लास, जो बढ़ता जाएगा शाम से रात में तब्दील होते हर एक पल के साथ. अब मेरे लिए कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, या मेरे लिए ऐसा नहीं, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, तो उनके कुछ मैसेजेस मैं बताऊंगा. अशोक पाटिल जी है वर्ली से, उन्होंने नारली पूर्णिमा की एक रील पिछले साल की इस साल की आई एम सो सॉरी भेजी हुई है हमें, तो वो भी इस सेलिब्रेशन में जुड़ चुके हैं. दीपा पालकर जी को सागर फिल्म का गाना बहुत पसंद आया. विजेंद्र घटोल जी अकोला से, गणेश मगर जी मुंगी पैठण से, तो उन्हें भी जो है ये गाने पसंद आए थे. उन्होंने भी वो खेत में काम करते हुए गाने सुन रहे हमारे साथ, तो अगला गाना सुनते हैं हम इसी समा को आगे बढ़ाते हुए. क्यों

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, जो अभी अभी लव यू जिंदगी कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे मैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आज है नारली पूर्णिमा का उत्सव। ये भक्ति परंपरा और निसर्ग के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जो है उससे भरा हुआ होता है। पूरी जिंदगी दरिया के नाम करते हुए मछुआरे एक पूरा महीना दरिया में ना उतर कर समुद्रीय जीवन को नई संजीवनी मिले, निसर्ग को पुनर्निर्माण के लिए समय मिल सके, संतुलन बरकरार रहे, एक रीसेट हो, इस विचार से नारी पूर्णिमा इस त्योहार की संकल्पना होती है। साल भर कुदरत से कितनी ही चीजें लेते रहते हैं हम सब, फिर साल का एक दिन उस कुदरत के नाम रखते हुए समुद्र देवता के साथ साथ वरुण देव जो बारिश यानी पर्जन्य के देवता हैं उनको भी अभिवादन करते हुए धरती पर उनकी कृपा बरकरार रहे इसलिए प्रार्थना की जाती है। यही है इस त्योहार का महत्व। तो अगला गीत हम पेश करते हैं, थोड़ा हैप्पी, थोड़ा हैपनिंग। सुनते रहिए FM Rainbow।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं.

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे आदित्य धाईगुड़े। और अभी हमने जो गाना सुना बॉम्बे टू गोवा का, तो वो थीम जो है वो जो है, अभी हम अगर महाराष्ट्र से, मुंबई से कहीं भी गोवा की तरफ भी जाने निकले या गुजरात की तरफ जाने निकले, तो हमें दिखाई पड़ेगा नारली पूर्णिमा का महोत्सव, जो कि कोली हमारे जो भाई दोस्त हैं, ये सब जश्न अभी हमें किनारे पर दिखाई पड़ेगा। इसी बहाने मैंने ये गाना चलाया कि एक थीम बन जाए, एक माहौल ऑलरेडी हमने जमा लिया है तो उसे कायम रखेंगे। और इस नारली पूर्णिमा के उत्सव के दरमियान जो नारल या नारियल, जिसे मराठी में नारल कहते हैं, कोकोनट जिसे कहा जाता है, इस कोकोनट के व्यंजन काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे नारियल की बर्फी होती है, नारियल का चावल, मतलब नारियल राइस जिसे बोलते हैं, कोकोनट राइस जिसे बोलते हैं, ऐसे कुछ व्यंजन वहाँ बनते हैं। साथ ही साथ मछलियों के भी, मच,

0: मछली से बने हुए, जो कि सो वेज और नॉन वेज दोनों तरह के व्यंजन हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं, जो कि हम चख सकते हैं हमारे कोली बांधवों के साथ। और उनका जश्न मनाने का तरीका जो है वो बहुत ही रंगीन होता है, उनके कपड़े, उनका पोशाक जो होता है बहुत ही रंगीन होता है और उत्साह से भरा हुआ ये सारा समा बांध लिया जाता है। जैसे शाम ढलती जाती है ये जश्न और बढ़ता जाता है और उसका मज़ा लेने में बहुत ही मज़ा आता है। क्योंकि मैं जो कि मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ और मुंबई के उत्तरी तट पर उत्तरी दिशा में पालघर करके जो एक एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां पे भी मैंने जहां भी वाढ़वन पोर्ट की जो डिक्लेयर हुआ है तो वो परिसर, वो क्षेत्र में मैंने काफी दिन गुजारे हैं और वहां मेरे कई कोली दोस्त हुए। तो मैंने नारली पूर्णिमा बहुत ही नजदीक से उसका अनुभव लिया था। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने हो तो हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए 8657661071 पर भेजिए, ताकि मैं पूरी दुनिया से उसे साझा कर सकूं। आप अपने अनुभव वहां पे कथित कीजिए, ठीक है? तो सुनते रहिए FM रेनबो 107.1, म्यूजिकली योर्स।
1: कभी हमने नहीं

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: बाज को आसमान गहरा लगता है, मछली के मुताबिक समंदर गहरा है। दोनों ही गलत नहीं है, बस दोनों की दुनियाएं अलग हैं। बाज ने कभी समंदर की तलहटी नहीं देखी, मछली ने कभी बादलों के पार झांका नहीं। जो जितना देख पाता है सच बस उसे उतना ही दिखाई देता है। जो जितना देख पाता है सच बस उसे उतना ही दिखाई देता है। कितनी खूबसूरत बात कही है ना कवि ने। जब तक हम एक छोटा कदम उठाते नहीं तब तक हमें वही सब भ्रम कहावतें सच लगती हैं जो असलियत में कुछ और ही होती है या शायद मौजूद भी नहीं होती। इसीलिए वह एक कदम उठाना जरूरी होता है, तभी असलियत उजागर हो जाती है। FM रेनबो 107.1 पर मैं सिर्फ आपका RJ आदित्य स्वागत करता हूं गजल कविताओं और अदब की महफिल अंदाज़े बयां में।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: फिर एक बार स्वागत है आपका अदब गजल और कविताओं की महफिल अंदाजे बयां में. मैं हूं आपके साथ सिर्फ आप ही का आरजे आदित्य धाईगुड़े. और दोस्ती के नाम की एक खूबसूरत सी कविता हाल ही में मैंने पढ़ी थी, सुनिए. हाँ, और सुनकर किसी दोस्त की याद आए तो उसे जरूर बताइएगा कि आरजे आदित्य धाईगुड़े ने आपको उसकी याद दिलाई थी. कवि तो अज्ञात है मगर वो दोस्ती का कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा. कोई पूछे तुमसे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं. एक दोस्त था पक्का कच्चा सा, एक झूठ था आधा सच्चा सा. जीवन का एक साथी था जो पास होकर भी पास नहीं. कोई पूछे तुमसे कि कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं. एक ख्वाब था टूटा बिखरा सा, एक दर्द मीठा गहरा सा. बारिश की पहली बूंदों में एक आंसू था वो ठहरा सा. वो एक मौसम था जो बीत गया, एक वादा था जो टूट गया. भीड़ में चलता साया था वो जो हाथ से तेरे छूट गया. कोई पूछे तुमसे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं. तुम कह देना कोई खास नहीं.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: समय हुआ है 6:48 और कार्यक्रम शुरू है अंदाजे बयां, जिसमें मैं आपका आरजे आदित्य स्वागत करता हूं। शून्य नामक कवित्री के रास्ते कहते हैं कि दरवाजे बंद हो तो हो खिड़कियों से देखना, खिड़कियां भी बंद मिले तो निहारना रोशनदानों से, ना मिले रोशनदान तो देखना अंतर्मन की आंखों से, मगर देखना जरूर, देखने की इच्छा से दिखते हैं आगे के रास्ते। ये एक और खूबसूरत सा, ढेर सारी आशाओं से भरा हुआ ख्याल, और साथ साथ में आकांक्षा मनोज सिन्हा जी हैं, जो हमें ऐसा ही कुछ ऐसे ही मूड वाला जो शेर उन्होंने हमें भेजा है वो अहमदाबाद से है। राहें चाहे कितनी भी कठिन हो, हौसलों की उड़ान कम नहीं होती, जो अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं उनकी मंजिल कभी दूर नहीं होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साथ साथ में हमारे और भी कुछ मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए हैं। वैदेही जी कह रही थी, एक शेर हमने अर्ज किया था तो उस बारे में वो कह रही थी कि उनके सारे दोस्त जो है वो स्पेशल है, उनके दिल के करीब है, तो वो इन कविताओं को उनके साथ कैसे शेयर करे, कोई खास नहीं तो सच नहीं, ये लाइन उन्हें पसंद आई। साथ साथ में पिछला जो गाना छम छम जो गाना है वो भी उन्हें पसंद आया। तो धन्यवाद, बने रहिए FM रेनबो 107.1 पर। और एक मैसेज खास है मेरे लिए, क्योंकि ये है विक्रम पाष्टे जी हैं, वो उनके दोस्तों के साथ में सफर में हैं, शैलेश नेगड़े और चेतन कनोजे भी हैं उनके साथ। ये तीनों अभी कार से ट्रैवल कर रहे हैं और साथ साथ में ये शो सुन रहे हैं। रास्ता बहुत लंबा है उनका, मगर वो ये शो सुनकर उनका सफर उन्हें आसान लग रहा है। तो उनके लिए जबरदस्त लॉन्ग ड्राइव वाला कोई गाना उन्होंने पेश करने को कहा है जरूर, और सफर आपका सुरक्षित रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ साथ में अरविंद कुलकर्णी जी ने मुझे ग्रीन टी भेजा है इचलकरण जी से, धन्यवाद, धन्यवाद जी अरविंद जी। साथ साथ में नमस्ते भेजा है पेण गांव से, इनका नाम है सुनील ताइड़े जी। तो ऐसे ही श्रोताओं को मेरी गुजारिश है कि बने रहिए हमारे साथ। और फिरोज सिगनपुरिया जी ने भी हमें प्लेलिस्ट जो हमने गाने प्ले किए वो उन्हें बहुत पसंद आ रहा है ऐसा कहा है। तो बने रहिए, हम गाने प्ले करते रहेंगे और गीतों का मज़ा आपको देते रहेंगे। कुछ ही देर में हमारा जो न्यूज़ सेक्शन है वो होगा 7:00, और उसके बाद सिर्फ आप ही का जो कार्यक्रम होता है फरमाइशों वाला वो कार्यक्रम शुरू होगा हम तुम, ठीक 7:15। और फिर जो फरमाइशें हैं आपकी वो 8 8 6 5 7 6 6 1 0 7 1 8 6 5 7 6 6 1 0 7 1 इस नंबर पर भेज दीजिए। और साथ ही साथ ऐसे ही कुछ बढ़िया से खूबसूरत ऐसे पलों का कुछ मेमोरी

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: धूम मचाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. ऑलरेडी टाइम हुआ है 7:20 और कार्यक्रम शुरू हुआ है हम तुम, जो कि है आपका म्यूजिकली रिक्वेस्ट आर. तो पहला जो गीत था फिरोज सिगनपुरिया जी ने मुकेश जी के जन्म शताब्दी पर उनके बर्थ एनिवर्सरी के लिए डेडिकेट किया था फिरोज सिगनपुरिया जी ने. उसके बाद धूम मचाले जो था वो रॉबिन जी हैं आगरा से, और साथ ही साथ वही गीत की फरमाइश थी जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, इन्होंने वो फरमाइश की थी. अभी अगला जो गीत प्ले होगा वो दो गीत जो फरमाए हैं, पहला तो पंकज मोहोड़ जी अमरावती से, और दूसरा जो गीत प्ले होगा वो है विजेंद्र घाटोल जी से. सुनते रहिए FM Rainbow 107.1 म्यूजिकली योर्स.

पाकिस्तान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है अजब सा।

0: FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: अगले दो बैक टू बैक गाने हम तुम कार्यक्रम में प्ले होंगे. प्रणव शिंदे जी की फरमाइश है और साथ ही साथ प्रकाश शिंदे जी का भी गीत इसके बाद प्ले होगा. सुनते रहिए FM Rainbow 107.1.
2: There's something I want to tell you, girl.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: दो खूबसूरत से गीतों के बाद हम लौटे हैं हम तुम कार्यक्रम पर, और अब इसके बाद जो प्ले होंगे वो खास करके कल महाराष्ट्र में तो जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, तो त्यौहार के लिए खास बलकरण वर्मा जी, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद भरत वर्मा, बंटी बबली वर्मा, इनकी तरफ से ये फरमाइश रहेगी पहला गीत, और उसके बाद अरविंद कुलकर्णी जी उनका गीत प्ले होगा। सुनते रहिए एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका सिर्फ आपका आरजे आदित्य धाईगुड़े और हम तुम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे आ पहुंचे हैं। बचे हैं बस 8 मिनट, घड़ी में समय हुआ है 7:52। इसके बाद जो गाने प्ले होंगे वो है राकेश माथुर जी के, विट्ठल मुंगसे जी के और दीपा पालकर जी के, और उसके बाद 8 बजे शुरू होगा इंग्लिश गीतों का कार्यक्रम जो कि है हिट एंड हॉट मिलेनिया के साथ। ठीक है, तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स।

बने रहिए एफएम रेनबो 107.1 पर। 8 बजे शुरू होगा इंग्लिश गीतों का कार्यक्रम और मैं लेता हूं आपकी इजाजत। सुनते रहिए एफएम रेनबो 107.1।

0: I'm saying.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887818 और 9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199689919888 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9775131687 9779701075 और 9779801032 6117 नंबर जारी किए हैं।

0: साधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: Discussions are expected.
5: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इस पे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
4: स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
6: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने

0: कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
1: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
2: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
4: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
5: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके

0: काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहां से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत इस्तकबाल एक बार फिर से आपका, मैं जर्री प्रोग्राम रंग महफिल लेकर। जरा खिड़की से बाहर नजर तो दौड़ाइए, आज चांद अपने पूरे शबाब पर है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान ने सितारों की चादर ओढ़ रखी है। ऐसी हसीन रात में अगर हाथ में चाय का प्याला हो और दिल में किसी की यादें, तो जुमा पर शायरी तो अपने आप ही आ जाती है। खैर, ये रात का सुकून ही तो है जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद आपको कुछ पल अपने लिए मिलते हैं और अपने दिलबर को याद करने का ये जो मौका होता है बहुत ही खूबसूरत भरा होता है। और ऐसे में हरिहरन साहब की यह गजल मैं क्यों ना चलाऊं आपके लिए, आइए मिलकर सुनते हैं।

ये जो गीत हैं, ये जो गजलें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़े अफसाने और कहानियाँ हैं जो कि हम गज़लों के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए वाबस्ता होते हैं दोबारा बार बार। और मैं ये मानती हूँ कि गज़ल हमें सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना भी सिखाती है। और जैसे कि आज की नई पीढ़ी की अगर बात करें तो उन्हें भी गज़ल बहुत पसंद है। सोशल मीडिया, लाइव मुशायरे और म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स ने गज़लों को बहुत अहम बना दिया है और आज के यूथ भी गज़लों को सुनना बहुत पसंद करते हैं। फरमाइश भी लगातार आती है बार बार, एक से बढ़कर एक गज़लें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी कड़ी में ये अगली गज़ल आप तक उस्ताद अहमद हुसैन की आवाज़ में है।

मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। न समंदर निगल सका इसको, न तवारीख तोड़ पाई है। वक्त की मौज पर सदा बहता

0: आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरी के संग। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया 11:39। आंख से आंख मिलाता है कोई, आंख से आंख मिलाता है कोई, दिल के बंद दरवाजों को खटखटाता है कोई, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने खामोश निगाहों से बहुत कुछ जताता है कोई।
1: कुछ फनकार ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आप समझ गए ना, लता मंगेशकर। लता जी जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक फिनोमिना है और इस सदी के लिए एक रूहानी सौगात है।

0: कभी कभी कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, नजरों से बनते हैं। एक नज़र में अपनापन, एक मुस्कान में सैकड़ों बातें और एक मुलाकात में पूरी कहानी छुपी होती है। आज की इस महफिल में हम बात कर रहे हैं एहसास की, जो आंखों से शुरू होती है और फिर दिल तक पहुंच जाती है।
1: मुकेश जी, जो प्लेबैक सिंगिंग में काफी मकबूल हो चुके थे, वो भी इस गैर फिल्मी म्यूजिक के दौर से बच ना सके और जुमाने को सुनाने के लिए कुछ अशआर चुन ही लिए।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं

0: दुश्मनों के खात्मे तक। ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

53 मिनट आप सुन रहे हैं रंग में जरी के साथ। ये आंखें ना बड़ी उस्ताद होती हैं और गुस्ताख भी होती हैं, खामोशी से वार करती हैं, जुबान की जरूरत नहीं इन्हें, दूर से ही हलाल करती हैं। मगर मैं ये मानती हूँ कि आंखें हमारे जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि हजारों दिलकश ख्वाबों, शायराना ख्यालों का एक कीमती खजाना है। शायरों ने महबूब की आंखों की तारीफ में जो कुछ भी लिखा, बड़ी तादाद में उसे गजलों में अमल किया गया। और वैसे दिन की भागदौड़ और बेचैनियों को अगर रात का आसरा ना होता तो जिंदगी ख्वाब देखने को भी तरस जाती। रात का अंधेरा और सन्नाटा कितना खूबसूरत होता है ना, जिसमें दिन भर की मसरूफियत के बाद कुछ पल हमारे लिए होते हैं। तो कुछ चुनिंदा गजलें हमने आप तक पहुंचाई, इस वादे के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि अगली दफा एक खूबसूरत मोड़ पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। रिश्तों की कद्र करिए, अहमियत समझिए और रक्षाबंधन की ढेर सारी मुबारकबाद आपको देते हुए जा रही हूँ मैं जरी, इस गजल के साथ छोड़े जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।

रात्रि के 12 बज चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर अब सुनिए मुख्य समाचार। नेपाल में बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हुई। नेपाल में बाढ़ के बाद 54 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में छोछेन, खोला और पुरेपू तसांगपो नदियों के संगम के पास बनी बैरियर झील के अगले 3 दिनों में टूटने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की ओर यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्न

नायडू शनिवार तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करना तथा भारत तथा श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीती। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और रात्रि के 12:03 हो चुके हैं और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक शो में जिसका नाम है जीरो आर शो। इसमें आप एक से बढ़कर एक गाने सुनेंगे और कुछ गाने आप सॉफ्ट गाने सुनेंगे, थोड़े से कुछ गाने पैपी और रोमांटिक गानों का भी आप मजा लेंगे। तो बस ऐसे ही नॉनस्टॉप गानों का मजा लीजिए और शुरुआत करते हैं पा मूवी के इस गाने के साथ। तो इसके साथ ही गानों की लड़ी शुरू होती है, तो गानों की दुनिया में खो जाइए।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक और शो का नाम है जीरो आवर शो। रात के 12:29 और 15 सेकंड।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर, इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब

0: चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

लीजिए पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हुई। नेपाल में बाढ़ के बाद 54 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के तहत के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू तसांगपो नदियों के संगम के पास बनी बैरियर झील के भी टूटने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। भारतीय मानक ब्यूरो ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं तथा त्योहारों से पहले 25,000 से ज्यादा चांदी के ज्वेलर्स BIS के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो शनिवार तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करना तथा भारत तथा श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीती। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों आपको समय बताए देते हैं, रात्रि का 1:26 हुए हैं और लीजिए अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुहानी रात। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो लीजिए आनंद इन खूबसूरत से गीतों का नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक में।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

रात के दो बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हुई। नेपाल में बाढ़ के बाद 54 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में छोचने खोला और पुरेपु तत्सांगपो नदियों के संगम के पास बनी बैरियर झील के भी टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग ने नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्यारोंग टाउनशिप का दौरा किया। बाढ़ से यहां 558 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो शनिवार तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करना तथा भारत तथा श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीती। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

रात्रि के 2:03 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और नॉनस्टॉप गानों का आप मजा ले ही रहे हैं। और अब शुरू होता है कार्यक्रम भुलाई ना बने, जिसमें आप वो गाने सुनेंगे जो कभी आप सुनते थे लेकिन फिर टाइम के साथ आप उन गानों को भूल गए, लेकिन अब उन्हीं गानों को दोबारा से सुनने का वो समय है। तो आप गानों की दुनिया में खो जाइए और ऐसे ही गानों का मजा लीजिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बुलाए ना बने, जिसमें आप पुराने गीतों का मजा ले रहे हैं जो 2000 के समय के कुछ गीत हैं। रात्रि के 2:29 हो चुके हैं और आप ये इन्हीं गीतों का मजा लेते रहिए नॉनस्टॉप।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 3 बजने जा रहा है। लीजिए अब पेश है अब तक के मुख्य समाचार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल। मृतकों की संख्या 389 हुई। नेपाल में बाढ़ के बाद 54 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूल जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग ने नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्यूरोंग टाउनशिप का दौरा किया। बाढ़ से यहां 558 लोगों के लापता होने की खबर है। नेपाल में चोचेन खोला और पुरेपू तसांगपू नदियों के संगम के पास बनी बैरियर झील के भी टूटने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की समीक्षा के दौरान जापान में बासमती चावल के लिए अधिक बाजार पहुंच की मांग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 4 दिन की उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और कुछ समाचार खेल से। खेल समाचारों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4th स्थान हासिल करने के बाद से यह भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:03:20। और लीजिए, ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। तो कुछ खूबसूरत से गीत लेकर आए हैं आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मैं हूँ आपके साथ कार्यक्रम में अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: कोयल से तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ये था कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपके साथ होंगे पंकज और मैं यानी अलमास रजा। अब चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

सुबह के 4 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल। मृतकों की संख्या 389 हुई। नेपाल में बाढ़ के बाद 54 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं।

चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग ने नेपाल सीमा के पास तिब्बत के गियारोंग टाउनशिप का दौरा किया। बाढ़ से यहां 558 लोगों के लापता होने की खबर है। नेपाल में छोछेन, खोला और पुरेपुर तंसांगपो नदियों के संगम के पास बनी बैरियर झील के भी टूटने का खतरा बढ़ गया है। एनडीआरएफ ने कहा, नेपाल का बाढ़ बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गाजा में इसराइल के हमलों में 3 लोगों की मौत और कई अन्य घायल। और हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हराया। 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद से यह भारतीय महिला की टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुबह के 4:03 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे इस पूरे घंटे नॉनस्टॉप गाने सारेगामा शो में। तो शुरुआत करते हैं पीकू फिल्म के इस गाने के साथ अनुपम रॉय की आवाज में। तो इसके साथ ही नॉनस्टॉप गाने शुरू होते हैं अब।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।